0: कुर्बान पवे मगर जान मनैया जाता हो
1: अणखी सूरमे अणख तो मिटन वाले जुलम सामने छातियां तान देने बिरले पुत्रों मावां जमदियां ने अपने फर्ज नूं जिहड़े पछाण देने आ करजा बैरी दा समे सर लाउण जिहड़े होके नित्र दे समे दे हाण दे ने चरण उहनां नूं कोई नहीं मार सकदा जिहड़े भाजियां मोड़ना
2: जाणदे ने।
1: मेरे सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का प्रकाश 1563 दे विच ते मेरे पातशाह जी का विआह कारज माता गंगा जी दे नाल 1579 दे विच मेरे सतगुरु जी 1581 दे विच गुरता गद्दी ते विराजमान हुंदे आ ते 1606 दे विच मेरे पातशाह सचखंड प्याने करदे आ करोड़ां वार मेरे सतगुरां दे चरणां ते सी झुकाउंदिआं होइआं नमस्कार करिए। असीं करजा नहीं ला सकदे गुरु साहिबानां दा जोधिआं दा परपकारियां दा सूरमियां दा आओ एक नहीं अनेकां भुल्लां हो जांदियां पातशाह जी दी गुरबाणी पढ़दे आ इतिहास कहिंदे आ गुरु साहिबां दी वडियाई सिफत सलाह करदे आ पातशाह बख्शन हारे ने तोए तक ना ऐब गुनाह मेरे जरा चाहीदा रहम दतार तेनों जेकर असीं ना गुनाहगार हुंदे कौन आखदा बख्शन
0: हार तेनों।
1: सतगुरु गुनाहां दी माफी बख्शन अगे तो समत देन। आओ बहुत ही सत्कारयोग गुरु घर दे सेवादार सैकटरी साहब सरदार दलजीत सिंह जी आप संगतां नूं अगला प्रोग्राम सरवण कराउणगे जी होइयां भुल्लां चुक्कां दी खिमा फतेह जरूर बुलाओ रसना करो पवित्र आखो वाहेगुरु जी का
2: खालसा
1: वाहेगुरु जी की फतेह।

0: हे गुरु जी की फतेह।
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सोट महला पंजवा। गुर का शब्द रखवारे, चौकी चो गिरद हमारे। राम नाम लागा, जम लज्जाए कर भागा। प्रभ जी तू मेरो सुखदाता, बंधन काट करे मन निर्मल। पूर्ण पुरख विधाता रहाओ, नानक प्रभ अवनासी। ताकि सेवन बिरती जासी, आनंद करह तेरे दासा। जा पूर्ण हुई आसा, बिलावल महला पंजेवा। ताती वावना लग गई, पार ब्रह्म शरण आई। जो गिरद हमारे राम कार, दुख लगे न पाई। सतगुर पूरा भेटिया, जिन बणत बनाई। राम नाम औ खुद दिया, ए काले बलाई रहा। राख लिये ते रखन हार, सब ब्याद मिटाई। कहो नानक कृपा भई, प्रभ सहाई। सलोक जय साधु गोबिंद भजन, कीर्तन नानक नीत। ना हो ना तू नह छुट है, निकट न जाइयो दूत। सलोक महला पंजवा। मन में चित बो चित बनी, उदम करो उठ नीत। हर कीर्तन का आहर, हर देहो नानक के मीत। सोहिला राग गौड़ी दीपकी महला पहला। इक ओंकार सतगुर प्रसाद, जय कर कीर्त आखिए करते का हुए बीचारो। तित कर गावो सोहेला, सेवर हो से जन हारो। तुम गावो मेरे निर्भव का सोहेला, हों वारी जित सोहेला सदा सुख हुए रहाओ। नेत नेत जीअड़े समालियन, देखेगा देवनहार। तेरे दाने कीमत ना पवे, तिस दाते कवन सुमार। संबत साहा लिखिया, मिल कर पावो तेल। देहो सजन असीसड़िया, ज्यो होवे साहेब स्यो मेल। घर घर एहो पहुंचा, सदड़े नित पवन। सदन हारा सिमरिये, नानक से देह आवन। राग आसा महला पहला, छे कर छे गुर छे उपदेश। गुर गुर एको वेस अनेक, बाबा जय कर करते कीर्त होए। सो कर रख वडाई तोए रहाओ, विश्वे चसिया घड़िया पैरा। थेती वारी माह हुआ, सूरज को रुत अनेक। नान करते के वेस, रागत नासरी महला पहला। गगन में थाल रव चंद, दीपक बने तारका मंडल जनक मोती। धूप मलयान लो पवन जबरो करे, सगल बुनरा।

दृष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मल। काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सब बल। सदा सुख मन वसे दुख संसार है खोवे।

सिमरत वेद। नानक भगता सदा विगास, सुनै दुख पाप का नास, सुनै सत संतोख ज्ञान, सुनै अठसठ का इसनान, सुनै पढ़ पढ़ पावह मान, सुनै लागै सहज ध्यान। नानक भगता सदा विगास, सुनै दुख पाप का नास, सुनै सरा गुणा के गाह, सुनै शेख पीर पातशाह, सुनै अंधे पावह राह, सुनै हाथ होवै असगाह। नानक भगता सदा विगास, सुनै दुख पाप का नाश, मने की गत कही ना जाए, जे को कह पिछे पछुताए, कागद कलम ना लिखन हार, मने का बह करन विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की सुध।

हो जाहो। तीर्थ तप दया दत दान जे को पावै तिलका मान, सुनिया मनिया मन कीता पाओ, अंतरगत तीर्थ मल नाओ। सब गुण तेरे मैं नाही कोए, विण गुण कीते भगत ना होए। स्वस्ताथ बाणी बरमाओ, सत सुहाण सदा मन चाओ। कवन सुवेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार, कवन सिर उती माह कवन।

हो ना कोई जा करता सिर ठीको साजे आपे जाने सोई किव करे आखा किव साला ही क्यों वरनी किव जाना नानक आखण सब को आखै एक दू एक सियाणा वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जा का होवै नानक जे को आपो जाने अगै गया ना सोहै पाताला पाताल लख आगासा आगास ओड़क ओड़क भाल थके वेद कहन एक बात सहस अठारह कहन कतेबा असुलू एक तात लेखा हुए

ज्ञान खंड का आखो कर्म, केते पवन पाणी वै संतर, केते कान महेश, केते वर में काढ़त घड़िय, रूप रंग के वेश, केतिया कर्म भूमि मेर केते, केते धूप देश, केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते, केते देवी वेश, केते देव दानव मुन केते, केते रतन समुंद, केतिया खानी केतिया बाणी, केते पात नरेंद, केतिया सुरती सेवक केते, नानक अंत न अंत, ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड, तिथे नाद विनोद कोड आनंद, शर्म खंड की बाणी रूप, तिथे घाड़त घड़िया बहुत अनूप, ता किया गल्ला कथिया न जाहे, जे को कह पिछे पछुताए, तिथे घड़िया सुरत मत मन बुद्ध, तिथे घड़िया सुरां सिद्धां की सुध,

अंत न अंत, तिथे लो लो आकार, जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार, वेखे विगसे कर विचार, नानक कथना करड़ा सार, जात पहारा धीरज सुनियार, अहरण मत वेद हथियार, भौ खला अगन तपताओ, भांडा पाओ अमृत तित ढाल, घड़िए शब्द सची टकसाल, जिनको नदर कर्म तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल सलोक, पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत, दिवस रात दोय दाई दाया, खेलै सगल जगत,

रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत केहे। अचल मूर्तन भव प्रकाशम तोज किहजै कोट इंद्र इंद्राण शाहि सहाण गणिजै। त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिण कहत त्व सर्व नाम कथ कवन कर्म नाम वर्णत सुमत। भुजंग प्रयात छंद नमस्त्वं अकाले नमस्त्वं कृपाले नमस्तं अरूपे नमस्तं अनूपे नमस्तं अपेखे नमस्तं अलेखे नमस्तं अकाये नमस्तं अजाये नमस्तं अगंजे नमस्तं अपंजे नमस्तं अनामे नमस्तं अठामे नमस्तं अकर्मं नमस्तं अतर्मं नमस्तं अनामं नमस्तं अतामं नमस्तं अजीते नमस्तं अपीते नमस्तं अबाहे नमस्तं अटाहे नमस्तं अनीले नमस्तं अनादे नमस्तं अशेदे नमस्तं अगादे नमस्तं अगंजे नमस्तं अपंजे नमस्तं उदारे नमस्तं अपारे नमस्तं सोएकै नमस्तं अनेकै नमस्तं अपूते नमस्तं अजूपे नमस्तं निरकर्मे नमस्तं निरपरमे नमस्तं निर्देशे नमस्तं निरपेशे नमस्तं निरनामे नमस्तं निरकामे नमस्तं निरताते नमस्तं निरकाते नमस्तं निरतूते नमस्तं अपूते नमस्तं अलोके नमस्तं अशोके नमस्तं निरतापे नमस्तं अथापे नमस्तं त्रमाने नमस्तं निदाने नमस्तं अगाहे नमस्तं अबाहे नमस्तं तरवर्गे नमस्तं असर्गे नमस्तं प्रपोगे नमस्तं सुजोगे नमस्तं अरंगे नमस्तं अपंगे नमस्तं अगम्ये नमस्तस्तरम्ये नमस्तं जलाश्रे नमस्तं निराश्रे नमस्तं अजाते नमस्तं अपाते नमस्तं मजबे नमस्तस्त अजबे अदेशं अदेशे नमस्तं अपेशे नमस्तं निरतामे नमस्तं निर्वामे। नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्त देवाय नमस्तं अपेवाय नमस्तं अजन्मे नमस्तं सुवनमे। नमो सर्वगौने नमो सर्वपौने नमो सर्वरंगे नमो सर्वपंगे नमो काल काले नमस्तस्त दयाले नमस्तं अवर्णे नमस्तं अमरणे नमस्तं जरारंग नमस्तं कृतारंग नमो सर्वतंदे नमोस्त अबंदे नमस्तं निरसाके नमस्तं निर्वाके नमस्तं रिहिमे नमस्तं क्रीमे नमस्तं अनंते नमस्तं महंते नमस्तस्तरागे नमस्तं सुहागे। नमो सर्वसोखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले। चाचरी छंद त्व प्रसाद अरूप हैं अनूप हैं अजू हैं अपू हैं अलेख हैं अपेख हैं नाम हैं अकाम हैं अते हैं अपेह हैं जीत हैं पीत हैं त्रमान हैं निदान हैं त्रवर्ग हैं सर्ग हैं अनिल हैं अनाद हैं अजय हैं अजाद हैं जन्म हैं वर्ण हैं पूत हैं पर्ण हैं अगंज हैं पंज हैं चूज हैं चंज हैं अमीख हैं रफीक हैं तंध हैं बंध हैं निर्बूज हैं सूज हैं अकाल हैं अजाल हैं अल्लाह हैं अजा हैं अनंत हैं महंत हैं

है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है। भुजंग प्रयात छंद नमो सर्व माने समस्ति निदाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे अनंगी अनाथे नरसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृत्ये नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे प्रपंगी परमाथे समस्ती विपूते कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखी अपरमी अपोघी अपुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत प्रेत देवे सुतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो शाह शाहं नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं स्नानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनुपे रूपे समस्त निवासी सदा सिद्धा बुद्धा वृद्ध कर्ता अदो उर्ध अर्धं अगं ओग हर्ता परं परम परमेश्वरं प्रोच पालं सदा सर्वदा सिद्ध दया दाता दयालं अछेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तस्ततामं तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेस हैं भुजंग प्रयात छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्व माने समस्ति निदाने नमस्त्वं निरनाथे नमस्त्वं प्रमाथे नमस्त्वं अगंजे नमस्त्वं अपंजे नमस्त्वं अकाले नमस्त्वं कृप अपाले नमस्त्वं अकाले नमस्त्वं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे

चक्र बकर फिरै चत्र चक मन ही प्रतीन लोक चौदह के बिखै जग जापई जेह जाप आद देव अनाद मूर्त थाप्यो सबै जेह थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रच्यो स्वयं बवगड़न भंजन हार कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख देश धर्म धाम स्व भरम रहत भूत लख भेस अंग राग न रंग जा कह जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उस्तेक पुरख अवधूत गर्भगंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्वगंता सर्वहंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र न जानहि जे रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जा कह नेत भाखत नित कोट सिमरत पुराण शास्त्र न आवहि वह चित मदपार छंद त्वा प्रसाद गुण गन उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस दिन अना

बंध है, अभगत है, विरक्त है, नास है, प्रकाश है, निचिंत है, सुनिंत है, अलख है, देख है, अलेख है, भेख है, ढा है, अगाह है, संभ है, गंभ है, नील है, नाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजाद है, चर

त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता रसावल छंद त्वा प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अभंगं विभूते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात निरसाकं श्रीख मृतोमीख सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती छंद त्वा प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमेशुल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनल चिराग है के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी दिहंद है के राज करहंद है करीमुल कमाल है के जरूरत करीमुल कमाल है के हुसनल जमाल है गनीमुल खराज है गरीबुल नवाज है हरीफुल सिकन है हरासुल फकन है कलंकंग प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजाय करहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है के नरकंग प्रणास है बहस्तुल निवास है के सरबुल गवन है हमेशुल रवन है तमामुल तुमीज है समस्तुल अजीज है परंग परम ईस है समस्तुल अदीस है अदेशुल अलेख है हमेशुल अभेख है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है के जुरत जमाल है के तलंग प्रकाश है कि मितो सुभाष है के अजब स्वरूप है कि मितो विभूत है कि मितो पसा है कि आत्म प्रभा है के तलंग अनंग है कि मितो भंग है मदभार छंद त्वा प्रसाद मुन मन प्रणाम गुणगन मुदाम अरबर अगंज हर नर प्रपंज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बरनर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जलथल मुदाम अंश जिगा अंग असन भंग उपमा अपार गतमित उदार जलथल अमंड दिसविस अभंड जलथल महंत दिसविस बेअंत अनुभव अनास त्रित तर तुरास आजान बाहु एक सदाहु ओंकार आद कथनी अनाद खलखंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनछिज गात आजिज न बात अनचंज गात अनरंज बात अन टुट भंडार अन ठट अपार अढ़ीठ धर्म अत ठीठ कर्म अण ब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद त्व प्रसाद करुणालया है अरकालया है खलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उबारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्या है जग जान्या है सर्वं पर है सर्वंकर है सर्व पास्य है सर्वनाश्य है करुणाकर है विश्वंबर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंड से खलखंड से परते पर है करुणा कर है अजप्पा जप है अथप्पा थप है अकृता कृत है अमृता अमृत है अमृता अमृत है करुणा कृत है अकृता कृत है तरणी तृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता अमृत है अजबा कृत है अमृता अमृत है नर नायक है खलकायक है विश्वंबर है करुणालय है नृप नायक है सर्व पायक है भाव भंजन है अरगंजन है रिपतापन है जप जापन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म वस है जस के जस है भुजंग प्रयात छंद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राजसंग तामसंग शांत रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जुग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह करता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे नादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आसासे नमो बांक बांके अपंगी स्वरूपे नंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले नंगी कामे एक श्री छंद अजय लय भय भय भूअजू अनास अकास गंज भंज लख पख अकाल दयाल लेख पेख नाम काम गाटा अनाथे परमाथे जो नियमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे करमंग अपरमंग अगंजे लेखे भुजंग प्रयात छंद
नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे गंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामं विपूते सो निरकामं विपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सुतर्मं विपूते सदा सच्चिदानंद सत्रं प्रणासी क्रीमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब विपूते गजायब गनीमे हरियं करियं क्रीमुल रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे भंगं विपूते एको ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं छपै छंद त्वा प्रसाद सवैये श्रावक शुद्ध समूह सिधान के देख फिरयो घर जोग जति के सूर सुरारदन शुद्ध सुधा दिक संत समूह।

ऐसे ही ऐसे सुबैस बितायो, साच कहो सुन लिहो सबै जन प्रेम कियो, तिन ही प्रभ पायो। काहू ले पाहन पूज धरियो, सिर काहू ले लिंग गरे लटकायो, काहू लख्यो हर अवाची दिशा में, काहू पछा को सीस निवायो। कोहू बुतान को पूजत है पस, कोहू मृतान को पूजन तायो, कूर किरिया और जो सभी जग, श्री भगवान को भेद ना पायो। कूर क्रिया और जो सब ही जग, श्री भगवान को

आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए, हुजो सदा हमारे पच्छा, श्रीअस्तो जजू करिए और अच्छा, राख लेहो मोहि राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बांध दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता, काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो, जवन काल सब लोग सुवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो, आद अंत एक कै अवतारा, सोई गुरु समझी अहो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जने आप सवारी, सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै, जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा, जब आकर्ख करत हो कबहू, तुम मैं मिलत देह तर सब हूं, जेते बदन श्रेष्ठ सब तार है, आप अपनी बूझ उचार है, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद।

अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत, महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत न पैव। आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सुरूपा रंक भयो राव कही भूपा, अंडज जेरज सेतज कीनी उत भुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हुआ बैठा कहूं सिमट भयो शंकर एकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार सिख संगरो। दुष्ट जिते उठवा तुत पाता सकल मलेश करो रण काता। जे अस तो तव शरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हुआ मरे। पुरख

ले हर नाल रौ तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओ करे तेरा कार्ज सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रौ हर नाले साचे साहिबा क्या नाही कर तेरे करता तेरे सब किछ है जिस देहे सो पावे सदा सिफत सलाह।

आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किलविख कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सचै सवारिया कह नानक आनंद है आनंद गुर ते जानिया बाबा जिस तू देह सोई जन पावै पावै ता सो जन देह जिसनो होर क्या करह वेचारिया एक भरम भूले फिरहे दह दिस एक नाम लाग सवारिया गुर प्रसादी।

न पाया। सुर नर मुन जन अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया। पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन वसाया। जी जंत सब तो दो पाए, एक वेख परसन आया। लभ लोभ अहंकार चुका, सतगुरु भला पाया। कह नानक जिसनो आप तुठा, तिन अमृत गुर ते पाया। भगता की चाल निराली, चाला निराली भगत हकेरी। विखम मार्ग चलना, लभ लोभ

धर जग सो हमरी रचया करे गुरु कलगी धर जग बोले सो निहाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

दर्शन परसे है गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसम दी नूर अरशों कुरसों झटी है।

अंतर्गत होके सत्संग जी अपने नाम नु सुनना करना जीओ नाव चक्कर ते सुन सकते हो हिरदा चक्कर जिथे दिल दी धड़कन है उत्ते सुन सकते हो कंठ चक्कर जिथे गले चो आवाज आउंदी है उत्ते भी सुन सकते हो किसी भी प्राणी ने जोर दे के मस्तक ते ध्यान दे के बैठने की कोशिश नहीं करनी जीओ सहस आवाज न गुरमुखां दे शब्द चलदे आ उन्होंने शब्दों विच भी ध्यान रखना जीओ

आनंद सुनहो वडभागी हो सगल मनोरथ पूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे आ भर पूरे। सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महाता।

जैसा सतगुर सुनी दा तैसो ही मैं डीठा विछड़िया मेला प्रभु हर दरगह का बसीठा हर नामो मंत्र दृढ़ाएं दा कटे होमे रोग नानक सतगुर तिन्ना मिलाया जिन्ना धुरे पाया संयोग सज्जन सच्चा पातशाह सिर सहां दा साहो जिस पास बैठिया सो ही है सबना दा वेसाहो सतनाम वाहिगुरु साहिब जी जैतसरी महला पंजवां वार सलोका नाल एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक आदि पूर्ण मध्य पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है सिमरंत संत सर्वत्र रमणं नानक अगनासन जगदीशर है आद पूर्ण मध्य पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है सिमरंत संत सर्वत्र रमणं नानक अग नासन जगदीशर है पेखन सुनन सुनावनो मन मह दृढ़ी है साच पूर रहो सर्वत्र मैं नानक हर रंग राच पौड़ी हर एक निरंजन गाइया सब अंतर सोई करन कारण समरथ प्रभ जो करे सो होई खिन मह थाप उथाप दा तिस बिना नहीं कोई खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रविया सब लोई जिस आप बुझाए सो बुझ से निर्मल जन सोई खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रविया सब लोई जिस आप बुझाए सो बुझ से निर्मल जन सोई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी जिन्हां दे पावन पवित्र चरणा अंदर आनंद कारज की आरंभता की अरदास होई है सच्चे पातशाह ने हुक्मनामा बख्शिश किया है। हुण भाई साहब जी पल्ले का शब्द पढ़नगे। बेनती है बेटी दे परिवार नूं ਉਹ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਾਉਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਪੱਲੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ।

हर आत्म राम पसारिया स्वामी सर्ब रहया पर पूरे अंतर बाहर हर प्रभ एको मिल हर जन मंगल गाए जन नानक दूजी लाव चलाए।

मन चौ भया बैरागिया बलराम जियो संत जना हर मेल हर पाया वड भागिया बलराम जियो निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी संत जना वड भागी पाया हर कथिए अकथ कहानी हिरदय हर हर हर धुन उपजे हर जपिय मस्तक भाग जियो जन नानक बोलै तीजी लावै हर उपजै मन बैराग जियो जन नानक बोलै तीजी लावै

करे बिचार कुदरत बिचारे धारण धारे जिन की आसो जाने आपे वेखै आपे बूझै आपे हुकम पछाणै जिन किछ किया सोई जाणै ताका रूप अपारो नानक किसनु बाबा रोईऐ बाजी है एहो संसारो वडहंस महला पहिला दखनी सच सिरंदा सच्चा जानिऐ सचड़ा परवदगारो जिन आपी न आप साजिया सचड़ा अलख अपारो दोए पुड़ जोड़ वे छोड़े अन गुर बिन घोर अंधारो सूरज चंद सिरजे अन अहनिस चलत विचारो सचड़ा साहिब सच तू सचड़ा देह प्यारो रहा।

जम मार्ग पंथ ना सुजई उजड़ अंध गुबारोवा ना जाल लेप तुलाइया ना भोजन परकारोवा भोजन पाओ ना ठंडा पानी ना कापड़ सिगारो

बिन साचे को बेली नाही, साचा एहो बीचारो। बाबा रोवह रवह सो जानियह, मिल रोवह गुण सारे वा, रोवह माया मुठड़ी।

और गोंड गंभीर अष्टपुत्र श्री राग के गोंड कुंभ हमीर खष्टम मेघ राग वह गावह पांचव संग बरंगन लावह सूरठ गोंड मलारी तुनी पुन गावह आसा गुण गुनी ऊंचा सुर सुहाव पुन कीनी मेघ राग सेव पांचव चीनी।

अहनिस सहज सुबाए दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए सतनाम वाहे गुरु साहेब जी।